बेशक दुआएं बहुत ताकत होती है. मैसेज आया है मोहम्मद रजा साहब की तरफ से, जो कहते हैं प्लीज आस्क ऑल लिसनर्स टू मेक दुआ फॉर वन ऑफ साउथ अफ्रीकाज ग्रेट कवाज फ्रॉम यस्टरडेज. शकील महबूब साहब फ्रॉम मोबेनी हाइट्स इन डर्बन इज वेरी इल. जी हाँ, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामिल अता फरमा. और फिर से मैं कहूँगी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे महबूब है, और इसके सिवा इसकी बादशाह और तारीफ है. वो ज़िंदगी और मौत देता है और चीज़ पर खूब कदर रखता है. काफ़ी जनाजे हुए इस्माइल मंडा, इस्माइल दलवी, हाजी साहब, हाजी अब्दुल करीम कोटवाला इस दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह ताला इन सबको आला दर्जा दे जन्नत का, इनकी मगफिरत करें, यही दुआ है. अगला कलाम ज़िक्र.

बेशक हम फिर से गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरफूज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जो मजलिस में बैठी और अल्लाह के जिक्र करते हैं तो फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है और उन पर सकीनत नाजिल हो जाती है, उनके दिलों पर सकून इत्मीनान और दिल एकदम इत्मीनान हो जाता है और अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाते हैं। और मैसेज आया हमारे असलम साहब और रुखशाना अपा की तरफ से, हर हफ्ते वो मुझे मैसेज भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशल ग्रीटिंग्स टू खैर इंसान चोकले इन्जॉइंग सफियाज़ चॉइस सिलेक्शंस, अल्हम्दुलिल्लाह, लव एंड दुआज फ्रॉम रुखशाना एंड असलम, नॉट फॉरगेटिंग सफियाज़ ऑल लिसनर्स एंड ऑल टेक्निकल स्टाफ, आमीन टू ऑल सफियाज़ ब्यूटिफुल दुआज। मुझे खुशी है कि आप प्रोग्राम इन्जॉय कर रहे हैं। अगला कलाम है या अल्लाह कयामत के दिन कुरान ना।

वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से उठी, कुरान को अपने पास रखा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा,

एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये घर ये गमरे ये रिश्ते ये दौलत सब पीछे रह जाएगा। हम सबको अपने रब के सामने लौट कर जाना है,

मत छोड़ना, हमारे लिए अपने कलाम से मोहब्बत लिख देना, हमारे दिल में कुरान की जगह बना।

जी हाँ, बहुत ही असलम सब प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं और काफी लिसनर्स के मैसेज आ चुके हैं. मैसेज आए, बर्थडे मैसेज आए हैं. दिस इज शुक्रन फॉर अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम. बर्थडे विशेस टू आर रहमान दादा फॉर द फर्स्ट ऑफ सितंबर, बाबू कसीम फॉर द सेकेंड सितंबर, एंड नसीमा दलवी फॉर सिक्स सितंबर, एंड क्यूट लुकमान फॉर सेवन सितंबर, एंड एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स टू टू ब्यूटीफुल कपल्स, नजीर भाईजान एंड नईमा एंड फातिमा एंड मुनाफ फॉर द 4th of September, and not forgetting my wonderful son Moeen Dalvi for the 5th of September. Moeen, mera beta hai, mashallah, to Allah Ta'ala usko sehat tandrusti lambi umar de, aur keeping the loving son that he is. And also Moeen ke liye greetings aayi hai, uske pyari wife Nafisa aur uske bete hamare chote se Yusuf ki taraf se Moeen ke liye. To ye agla kalam inke liye hai.

बेशक बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना, और मैसेजेस आ रहे हैं फिर से, लोग इस ट्रैक को बहुत पसंद कर रहे हैं और बर्थडे मैसेजेस भी आ रहे हैं, और ख़ास बर्थडे मैसेजेस हैं हमारे प्यारी मुमताज़ आपा के लिए जिनकी सालगिरह है कल। तो मैसेज आया उनके बच्चों की तरफ से, हलीमा और दामाद आसिम, नफीसा और मुईन और नूरा, हमज़ा, यूसुफ और सलमान जो जौबर्ग में हैं, और उनके बेटे हसन और उनकी बहू फिरोज़ा। और ये मैसेज आ रहा है, दे से दैट मे अल्लाह ग्रांट मॉम लॉन्ग उमर फिल्ड विद गुड हेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम हर लविंग हस्बैंड आशिक साहब, चिल्ड्रन, सन एंड डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम रुमानी और रोइका फैमिली और इब्राहिम फैमिली की तरफ से। तो ये मैसेज है हमारी प्यारी मुमताज़ आपा के लिए जिनकी कल है सालगिरह। माशाल्लाह मुमताज़ आपा की सालगिरह कल है 7 सितंबर को। तो उनके लिए मैसेज आया है, मे अल्लाह ग्रांट मॉम लॉन्ग उमर फिल्ड विद गुड हेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम हर लविंग हस्बैंड आशिक रुमानी, चिल्ड्रन, सन एंड डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। एंड दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम रोइका रुमानी एंड इब्राहिम फैमिलीज, आपके भाई बहनों की तरफ से, आपके पूरे फैमिली ख़ानदान की तरफ से। और हमारी भी दुआएं मुमताज़ आपा आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा खुश रखे।

बहुत ही खूबसूरत कलाम शमशु पाक साहब की आवाज़ में, प्यारी माँ। अगला कलाम भी हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कि दुनिया में जब तक रहे आबरू से रहे, दुनिया में मेरी आबरू रखना।

और एक बर्थडे मैसेज मैं भूल गई हूँ, 21वीं साल गिरा जाहिद ताकी साहब के लिए, माशाल्लाह हैंडसम यंग गाय है, अल्लाह ताला उन्हें भी सिरात अल मुस्तकीम पे रखे, सेहत तंदरुस्ती से नवाजे और लंबी उम्र और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए।